0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 4 बज्यो 8:04 PM